मजदकराय अरे मनवाचान दूर वजदास्तार जच्छिकस्ते बाद अरे मंदेवाम दरुजान जादुवान दरवंदान की कान करफान सास्तारान गुनेगरान अश्मोगान दरवंदान दुश्मन फ्रियान जच्छिकस्ते बाद दुष्पाचान वाचान बाद दुश्मन सतो बाद दुश्मन वाचान बाद और मजदखदाय अजम गुना पतित पशेमानुम अजवरस्तीन दुष्मत्त।

जिंदगी के हर लम्हे को तुम ही ने तो सवारा है, हर पल में एक मीठा एहसास तुम ही से तो छाया है, मौसम की हर बदलते रुख में तुम्हारा ही तो साथ पाया है, ऐ साई हर सुर हर साज में बस तुम्हारा ही तो गुणगान आया है, तुम ही हमारे प्यास हो और हमारे जीवन का आधार हो, कैसे दूर रहे ओ भगवन कैसे दूर रहे।

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Suhi Mahalla Chautha Karshema Ekko Ankar Sadgur Parsad नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए हर किया कथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए पतद जात उत्तम पया चार वर्ण पै पगयाए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शिपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए जन नानक तिन को वंदन परसे जे कृपा करे हर राए सूही महला चौथा तिन्नी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे तिस हलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक कै पवे इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित साई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संची है पाई जे हलत पलत हर होए सिखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाए हर तन कितै ना पाई हर रतने का वापारिया हर तन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई हर तन रतन जिवे हर माणक हर तन नाल अमृत वे लैवत हर भक्ति हर लिव लाई हर तन अमृत वे लैवत का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हालत पलत हर तने की भगता को मिली वड्याई हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत किसे का गवाया न जाई हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई जम जा गाती डंड ना लगाई सागती पाप करके बिखिया तन संचिया तिन्ना एक विख नाल ना जाई हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया अगै पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनों दे सो हर तनो लद चलाई इस हर तने का तोटा कदे नया वई जन नानक कौ गुरसो जी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भक्त सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णीय जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसते पाइए परम निधान जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे सो निफल सब अगे

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तेहा हों करी वखियान, सूही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, जो पावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत रीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रमपौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया

बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख धंद पिटाई। सबको तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जानै, सब तुदनो नित त्याए। जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए। सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विश्र महादेव त्रै गुण रोगी, विच हों मैं कार कमाई। जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हों मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख भारी। गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हों बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो। नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो। सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी। अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखी। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै। ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया। जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै। एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करै से रोवै। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूर्ख मुग्ध नी जान। जन नानक कहो हर बख्स लै, मेरे स्वामी शरणागत पया अजान। राग सूही महला पंजवां, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजी घर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार।

कनक पूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास। परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एकंकार, ओह अविनाशी बिनस।

तेरा प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मेर सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रपताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज विशाई।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावा क्या कहरी जावा बिदगित पावा दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहीए मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे। सुही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावै कह तो पहुता। जो प्रेमाने तिनकी रीसा कूड़े मूर्ख पीहा ठीसा रहाओ। पेख दिखावै सच ना कमावै कह तो महली निकट ना आवै। अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझैना एना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखै नाद करन सुन पीना हर जै सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बस करी जै कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नजर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा लाल

जप तप संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलाव मोहे प्राण पतीरी, मान तान अह बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहाग वतीरी। सूही महला पंजवा, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझी पेख पेख मन साधारा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, चितै न बिसरै काहू बेरा, रहाओ बै खरीदहु दास रो तेरा, तू भारो ठाकर गुणी गहेरा। कोट दास जां कै दरबारे, निमख निमख वसै तिन नाले, हाँ किश नाही सब किश तेरा, ओत पोत नानक संग बसेरा। सूही महला पंजवा, सूख महल जाके ऊच द्वारे, ता मैं वासै भगत प्यारे।

असाच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग इहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही।

साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बादशाह सहा व्यापारी मरना, जो दिसै सो काले खरना, कूड़े मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। कृपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सुही महला पंजवां कड़क।

चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा, जा कै सिमरन कछ भउ ना बे।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लगे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट न आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जप है दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न सकै तीने ताप, निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे। नानक मांगै दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

पावै। जन की महिमा केतक वर्णो जो प्रभु अपने पाणे, कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

प्यास चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंधकूप ते काढ़ लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कश ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहूं काची देह आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह

निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत बचन हृदय और तारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पै सारी तुद जे वडे अवर ना कोई जिसनो लाए लहै सो लागे भक्त तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर

ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्या

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुरप्रसाद पहुतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।